को जो जुगे जुग सद पीढ़ी गुरु चलन दी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबला फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवा शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमन चित लाए, जल तल पूरे आपन वारी, घट घट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारे जियो मित्रा बिरसागर संसारे, चरण कमन कर भोयत करते सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेटे वडभागी भागी,

शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीमना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गए लीने हर जसो दीने जोन ना तावे न मरी सत गुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देखना पुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार बिछता अंदर कीड से पए पते वार हो वार नानक नाम रते से रंगुल गुर कै सह सुपाय भक्ति रंग न उतर सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ सत तिनि ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओतै कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेत जो दिनदार रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु न सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सचे सब सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनाश ज्यों पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले एक ना दूर है पास सब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालहां दे दर गुरमुखा नू परगास सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख का वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे बीचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर बीचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सब दरते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लए हर लाए सलोक महला तीजा नानक सो सूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण मगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया महला तीजा गुर पूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन मग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जोए न साका।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लागत तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परम लाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ। कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, एन बेद पवसागर तरना। जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मो तब बिसर गया, जां तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तरमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमें तार चोहत निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनिसा परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निबन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन सारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नूं आप प्रतपाले

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन आ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा।

मोर्चा ना लागे जा होमे सुख अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच सुमावणिया बिन सतगुर क्यों ना देखा जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाए आपे आप मिले या सहजे सहे सुमावणिया गुरमुख होवे सो एक स्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जिलाए कया अंदर वंज करे वापारा नाम दान सच पावणिया गुरमुख करनी कर कीर्त सार गुरमुख पाए मुख द्वार अंदर रंगरता गुण गावे अंदर महल बुलावणिया सतगुर दाता मिले मिलाया पूरे भाग मन शब्द वसाया नानक नाम मिले बडियाई हर सच्चे के गुण गावणिया माज मुहला तीजा आव न्याय ता सब कुछ पाए गुर शब्दी सच्ची लिव लाए सच वणंजय सच संग्रह सच व्यापार करावणिया हौ वारी जू वारी हर गुण अनदिन गावणिया हौ तेरा तू ठाकुर मेरा शब्द वडियाई देवणिया रहाओ वेला वक्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवे है सच वडियाई गुर कृपा ते सच पावणिया आओ पूजन सतगुर तुठे पाए आनस चूके हर समान नमसाए सच संतोख सह सुख बाणी पूरे गुर ते पावणिया सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा फिर ओए कित्थों पाएन मुख द्वारा मर मर जम्मे फिर पर आवे जमदर झूठा खावणिया शब्दे साध जाने ता आप पछाणे निर्बल माणी शब्द वखाणे सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौण दिना मन सामणिया सो थां सुहाया जो हर मन पाया सत संगत पे हर गुण गाया अन दिन हर साला है साचा निर्मल नाद बजावणिया मानो खोटी रास खोटा पासारा कूड़ कमावन दुख लागे पारा भरमे भूले फिरन दिन राती मर जन्मे जन्म गवावणिया सच्चा साहिब मैं अत प्यारा पूरे गुर के शब्द अधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुसम कर जाननिया माज महला तीजा तेरिया खाणी तेरिया बाणी बिन नावे सा परम भुलाणी गुर सेवा ते हार नाम पाया बिन सगुर कोई न पावणिया ओं वारी जू वारी हर सेती चित लावणिया हर सच्चा गुर भगती पाए सहजे मन सामणिया रखाओ सतगुर सेवे ता सब कुछ पाए जेही मनसा कर लागे तेखा फल पाए सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे भाग मिलावणिया इहो मन मैला एक ना त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए तड़ तीर्थ दिसंतर पवे अंकारी होर वधेरे होमे मल लामणिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीत मरे हसो चित लाए हर निर्मल सच मैल ना लागे सच लागे मैल गवावणिया वाज गुरु है अंध गुबारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे फेर बिष्टा माए पचावणिया मुक्ते सेवे मुक्ता होवे होमे ममता सब देखोवे अंध हर जीव सच्चा सेवी पूरे पा गुर पावणिया आपे बगसे मेल मलाए पूरे गुरते नाम निद पाए सच्चे नाम सदा मन सच्चा सच सेवे दुख गवावणिया सदा हजूर दूर ना जाणो गुर शब्दी हर अंतर पछाणो नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा एथे साचे तो आगे साचे मन सच्चा सच्चे शब्द राचे सच्चा सेवे सच कमावे सचो सच कमावणिया हो वारी जू वारी सच्चा नाम मन वसावणिया सच्चे सेवे सच सुमावे सच्चे के गुण गावणिया रखाओ पंडित पढ़े साधना पावे दूजे पाए माया मन फरमावे माया मोए सब शुद्ध गवाई कर अवगुण पछोतावणिया सगुर मिले ता तत पाए हरका नाम मन वसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया चिलवे काटे क्रोध निवारे गुरका सदरखे उरतारे सच रते सदा बैरागी होमे मा

पुर शब्द रंगाए हारंग चढ़या आते पारा हार रस रस गुण गामणया गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नामगत होई गुरमुख कार सच कमावे सचे सच सुमावणया गुरमुख थापे थाक उथापे गुरमुख जात पद सब आपे नानक गुरमुख नाम थे नामे नाम सुमावणया माझ मखला तीजा उत्पत परलो सबदे होवे सबदे ही फिर ओपत होवे गुरमुख

पैरी चले हथी करना दिता पहने खाए जिन रच रचिया तिसे ना जाने अंधा अंध कमाए जा भजे ता ठीकर होवे ताड़ ता कड़ी ना जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार ना पाए महला दूजा देंदे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानी है तुरत मत चतराई ताकि क्या करे आख वखाणी है अंतर बह के कर्म कमावे सोच कुंडी जानी है जो धर्म कमावे इस धर्म नाओ होवे पाप कमाने पापी जानी है तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आख वखाणी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति वे तू बुल है विण ज्योति कोई किस करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया आ इको सुगड़ सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगत उपायक तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पायक तुदे आपो जगत खुआया इसना अंदर अग्न है नै तिरते भुखा तिहाया सहसा एव संसार है मर जमे आया जाया बिन सदगुर मोह ना टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना धन जने दी माया तोबा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाया सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना विन हथा करना जीबे बाजो बोलना क्यों जीवत मरना नानक हुकुम पछाण कै तौ खसमे मिलना महला दूजा जिसे सुनिए जानिए साओ न पाया जाए रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए भय के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिला वा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खेल रचाया हौम में गर्भ उपाय कै लोभ अंतर जनता पाया क्यों भावे त्यों रख तू सब करे तेरा कर।

अमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गुण तन आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लय हर पावे। हम पराधी राखे गुर संगति, उपदे दियो हर नाम छिड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले ता विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए। तू गुर पिता तू है गुरु माता, तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई निज जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अन दिन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वस गत गयर केरी जन नानक सरनांग ते आए हर रखो पये जन केरी गौड़ी पूर बी महला चौथा प्यो मनुआ खिन्ना टेके बहु रंगी दहे दहे चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुनो वड्डाहे का।

मेरे हीरे प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सब गुरे आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुरे आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे।

जियो हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रव गाजे जियो आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज मखला चौथा मैं हर नामे घर बिरो लगाई जियो मेरा हर प्रामित मिले सुख पाई जियो हर प्रव देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखागर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे घर प्रव केरे जियो जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर घर नाम जियो प्राण घर मेरे जियो फिर

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तुही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सागुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर शोक विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधहार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्बनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे।

मिटे कलेश सुखी होए रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

योग हर के मार्ग पद पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करणहार सदवसे हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पंजवां संत की तूर मिटे अकोट संत प्रसाद जनमन ते चोट संत का दर्श पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रखाओ संत के संग मिटिया अहंकार दृढ़ आवे सब एक अंकार संसो प्रसन्न आई बस पंचा।

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जद का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिम लागी।

उतरै जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पय निहाल, कहो नानक गुर पय है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमर स्वामी किल बिकनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ सा संगत पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राति, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो नानक।

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, कुछ दिन करी ना जीवना रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी, हस आलम्बन देव प्राभ घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समागे, तो प्रसन्न पै केसवा से दिन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार, साह संग नानक भजे हे तरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोज फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, योगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन्म

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे सा

चार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर की।

इनका आड़ न पाया। आगे चलन और है पाई, ऊहा कामना आया। तीर्थ नहाए और तरनी प्रमता, आगे ठौर न पावे, ऊहा कामना आवे। ए विद ओ लोग नहीं पति आवे, चतर वेद मुख बचनी उच्चरे। आगे महल न पाई है, बूझे नाही एक सुधाखर, ओ सगली झाख चुखाई है। नानक कहतो यो विचार, जे कमावे सो पार गरामी। गुर सेवो हर नाम त्यावो, यगो मनो गुमानी। गौड़ी माला महला पंजवा, माधो हर घर हर मुख कही है। हम ते कछु न हो वै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रही है रखाओ। क्या करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लाभ हो तित ही लागा, पूर्ण खसम हमारे।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा।

मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम्हें आओ, गय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे दिसराव, ताज अभमान मोह माया फोन, भजन राम चित ला को माई, उल्लेओ मन समझाए, वेद पुराण साल मग सुनकर, निमखन हर गुण गावे रघाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान, तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो, जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महल्ला नावा, साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या, रखाओ एक सुख मान्या सहज मिलाया।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

सेवा सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महल्ला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप पुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरनाश दुराचारी, ब्रह्म नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साह भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनुन्नी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली, तैन फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृदय सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मोरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचिर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड़स हर

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा काल जल जेवा अरनैणी कानी काल सुने बिखबायणी बिन शब्दे मूठे दिन रैणी हिरदे साच वसे हर नाए काल ना जोए सके गुण गाए नानक गुरमुख सब सुमाए गौड़ी महला पहला बोले साज मिथ्या नहीं राई चाले गुरमुख हुकम मर जाई रह अतीत सच्चे सरनाई सत कर बैसे काल ना जोहे मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिये निरकर बैस सहज कर लइये हस माते उस कहिये गुरमत चालने चिल नहीं डोले गुरमत साच सहज कर बोले पीवे अमृत तत विओले सतगुर देखिया दिखिया लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गातमित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सजो त्यो पार जय देखो है एक अंकार रहे निरालम एक असर करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चुकी अंग प्रमणी एन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच मैल गुर अलख लखाया निचल मैल निशाया माया सासन तोखे परम चुकाया जिनके मनमसया ससोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच ना मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम चित्रा पे जाका उपजंब दर्शन की जे ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रव राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा तेत काट अनहद बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार थे प्रव राखे कृपा तार जिनके हृदय हर घर सोई तिनका दर्श परसुख होई सर्व जिया में एक कोर आवे मन अहंकारी फिर जूनी पवे सो बुझे जो सदगुर पाए होमे मारे गुर शब्दे पाए अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभु होए दयाल नानक जन करिए सोले अष्टपदियां गुवारे री गौड़ी पिया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद ज्यो गाई को गोयली रखे कर सारा अहिंस पाले राख लेहे आत्म सुख तारा ए त्युत राखो दीन दयाला तौ शरणागत नजर निहाला रहाओ जय देखो तय राव रहे रख रख नहारा तू दाता पुता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन से ना अंधेहारा जग बिनसत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रापाया सच मुक्त द्वारा निकर मैल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या फसे जमजाला डोल बदा का जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर है सहजे पद पाई है अंतर शब्द निधान है मिले आप गवाई है नजर करे प्रवे अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चुकई लहा सद पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा घर का नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जेला कर्म कुमार ही बिन गुर अंधेहारा रखाओ अंधे अकली बारे क्या तिन सो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई केत विद निर्भई है खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का न हो पारखू कली काल विडाने सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नी रोता आपत को जाता कहे जाते को आया पारकी को अपनी कहे

कन नहीं रीसे। इस पर जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन ने आप कहो सो अपर अपारा। तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए साब।

ले आप हो जाओ। मानव को सूत को कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न काए। सास्त सिमरत सो देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़त जो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए बहे नृत्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सदगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथे अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिव लाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर हे लबटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर न फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अध परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सदगुर सेवा से वड़फागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नित काल संतावे। गुरमुख जम काल ने

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मल हरो, किस गुर को चूला भू पाखा, मां अग्न ते हाथ दे रखा, किस गुर के ग्रह टो भू पानी, जिस गुर ते अकल

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ बिन

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चार संतन नाप करायो, नाम कर्म न धर्म सोच, प्राप गए पूजा आपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वशल हरनायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समृत संत उठायो।

भावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना भावे, मरिए खावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे।

प्यारे रैन सु सुती जियो अंतर उरथारे अंतर उरथारे मिल गए प्यारे अनदिन दुख निवारे अंतर महल पिररावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सीगारे सच शब्द सीगारे हो मे मारे गुरमुख कार्ज सवारे जो जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर बीचारे मनमुख काम व्यापी मुझ संतापी किसे आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाओ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगण बख्शनहारा कामण कंत प्यारा घट घट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए सतगुर बूझ बुझाई सदा आनंद रहे दिन राती आनंदन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सात हन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरतै जियो क्यों कर दुत्र तरिया जाए राम नाम कर भुथा जियो शब्द खेबट विच पाए शब्द खेबट विच पाए हर आप लंघाए इन विद दुत्र तरीए गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीवतियां इओ मरिए खिनमय राम नाम के लिख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरख काम आपे जियो राम नाम की बिद नहीं जानी मात पिता सब भाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गात नहीं जानी होमे ताज संसारे जो आया सो सब को जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी गए संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वापारा राम नाम वापारा अगम अपारा गुरमती तन पाईए सेवा सुरत भगत ए साची विचों आप गवाईए हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सदगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए टहे पर टहे अब टहे परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे सुमाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निद निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक न जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक।

पौड़ी फेरव कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान पोवते आए साज सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हितकर नाम दृढ़ दयाला संते संग होद किरपाला ओरे।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सख अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त पुत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बो पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण प्रिथमी प्रे तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अगर माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटे,

मन ते कभू ना बिखिया टर जल धोवे बहुधे अनीत तुद कहां होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पातत बहु मूच बहुत सियाणप जमका पो व्याप अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप पेख अनेक अगर नहीं बुझे।

अनंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई बिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खां करे, जे ठाकर सो ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अंधे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तुत आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, दीर्घ की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलनहार, लपट रहो तय अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्त, मिथ्या त्रो मो अभमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भक्त साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण परवकार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पए, सबल दे नानक हर हर नाम ले, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिगाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगलते।

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मय ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सरा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता।

चित्त कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिट का करता, ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जूत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

का नाम सतराम दास आत्मराम नदरी आया दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान हो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रखे तैसा तिन नाओ आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो पसरे आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बौद्ध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट परदर्व को घेरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की है त्रिजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव कई कोट जख किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गाच सब ते नेरे तहु ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजो नी फिरे कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ये तरवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तय तय रखे नानक सबज प्रभ कहे हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिल निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रखनते कई कोट दर्शन प्रप्यास दिन को मिले ओ प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए

कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गाव आत्मरस तुग सह सुमाव अपने जन कौ सा सा सुमार नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जुत भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रखावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानुख गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन साह ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख ते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत दिखिया में रटे जे जानत अपने आप बचे परमे पूला दर्द तावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घड़ घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करावन सर्व

हर करंग हस कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊबकस पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबो पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ती स्नान कबू सिर साधक हो ज्ञान कबू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

अनदरूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

रंग सेवक को प्रपालनहार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्तान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपासा मीत बसारो चरण कमल हृदय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन घर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोबा को करे पली करनी सा सोबा पजहर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मैं हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कह नाय दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

नाम जप पावो, सुनत कहत रहत गद पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुपाए नान गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए होमे दिख पैल, होए चिंत बसे सुगनाल, साध गरासगर नाम सुमाल, छाड़ सियान सगली मना, सा संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, ईहा सुख दर्ग है जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप ए भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप, अनक विस्तार एक ते भय, एक अराध प्राश्त गए, मन तन अंतर ए प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक, फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए, नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान, कर कृपा देवो हर नाम, ताजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गाओ, सास सास प्रभ तुम्हें ते आव, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भक्त करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हारस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सोभर फरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग, परे सन्यान सब त्याग, अंतर परगास अनदिन निवलाग, बड़भागी जप्या प्रसोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनू सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया, इस पुन्नी श्रद्धा सा पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम सुमाए, सो क्यों बिसरे जे काल ना पन, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगर मैं रख, गुर प्रसाद को बिरला लख, सो क्यों बिसरे जे बिखते कड, जन्म जन्म का टूटा गंड, गुर पूरे तत हे बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पै तरिगे संसार, पिन भक्ति तन हो सीशार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जाल पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुवाओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिकसे साध चरण तोय, भगत जना के मन तन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बस दीजे कर्मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व सुमाय, प्रभ संत दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जप सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन गीत, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अंतराज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर घर नीत, पली सुकरणी सोपा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रद्यो निवास, सर्व सुख नानक परगास, श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार यो कशना दृष्टेता, पाप उन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, ताबैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग हो किसे

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके न लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रहे ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नाज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना खाणी मस्तक होवे लिखया हर सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमाणी। सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैणी सुखी

कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लयो नारायण दीन दुनिया चल नानक पकड़े चरण हार तेस दर गए मल सलोक मोहल्ला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारे देवन हार दातार मैं नित चितारे निखुट न जाई मूल अतुल पंडारे नानक शब्द अपार तेन सब किश सारे महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उत अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचरे साध जान अम्यो चले चरने पेख दर्शन नानक जीवया मन अंदर तरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कार्ज आवे रास महला पंजवा जे सिमरत संकट छुट है अंध मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर निमख ना विसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर पेटिया पार ब्रह्म हर पाड़ बुझ समद्दा

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गद पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहुरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

रे जन मन मद सुन लाई है, चतराई ना चतुर्भुज पाई है रखाओ। पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले रग राया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग

गगन साल चोवे मेरी पाठी, सांच महारस तन पया काठी, होआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा, रहाओ सहज कलालन जौ मिल आई, आनद माते अनदन जाई, चीन त चीत निरंजन लाया, कौ कबीर तो अनपो पाया।

दुख आगे आवे सो सुख हमो ना मांगया पावे। बिकया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय देव नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही हर।

आओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास पर लीनो अपना सतगुर कीनो पर पुकार काढ़ लीन सागर संसार चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसे निता नदचीत माया तप्त बुझिया अंगयार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रमणी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई

कहिए आपन कया ना लेगी। सर जियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कैत कबीर अकुल नहीं चेतया बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन सुमाया। अंजन माये नरंजन रहिए बौड़ ना पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बुलोइए गुरमत मनुआ अस्त्र राखो। इन बिद अमृत पीओइए रघाओ गुर के बाण बज्र कलश दी। प्रगटिया पद परगासा सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका। निचल शिव कर बासा तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए। यो जग बेद्या पाई दैत बूढ़ी पवन चुलावे। डोर रखी लिवलाई उन मन मनुआ सुन सुमाना। दुबदा दुरमत पागी कहो कबीर अनपो एक देखेया। राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन टिप दे। उल्ट पवन चक्कर खट पेदे सुरत सुन अनरागी। आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट सुमाना। गुर प्रसाद अगल पई अवरे ना तरथा बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे। जिन जैसा कर मानिया अलौती का जैसे पया बरेडा। जिन पिया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए। ऐसा कोए बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता। तिन तैसी चल देखी गौड़ी ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया। ते उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दो सुब्याप। सुन समाद दो ते नाही सहज की अकथ कथा है।

जैते उवजी तई सुमानी एवद बिसरी तबगी पंडित गुणी सूर हमदाते एक कह बढ़ हमगी जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सदगुर मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लईये तज बावे धाने बिकारा हर पद दृढ़ कर रही है कहो कबीर गुंगे गुड़खाय पूछे ते क्या कहिए राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कश आह ता किश नाही पंच तत तय नाही इड़ा पिंगला सुख मन बंदे ए आवगान कत जाही तागा टूटा गगन बिरस गया तेरा बोलत कहां सुमाई ए संसार मोको अन दिन व्यापै मोको को ना कह समझाई रघाओ जैवर पंड पिंड तय नाही रचनहार तय नाही जोड़नहार उसदा अतीता ए कहिए किसमाही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बेनासी काको ठाकुर काको सेवक को काहू कह जासी कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती हुआ का मर्म वही पर जाने हो तो सदा अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा पर मित बार खिंता सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दे तूंबा करी है जुग जुग सार दसा जी फिर पीतंती तूड़ सुनाही अनहद किंगुरी बाजी सुन मन बगन पए गए पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ता को पुनरब जन्म नहीं खेल गयो बैरागी गौड़ी गज नाव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नवखंड बहत्तर पढ़ लगो अधकाई गई बुनामन माहो कर छोडे जाए जुलाहो रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन शेर अठाई जाओ कर पाचन बेग न पावे चगर करे कर गाई दिन की बैठ खजम की बरकस ए बेला कते आई चूटे कुंडे पीगे पुरिया चलो जलाओ रीसाई शोशी नली तंत नहीं निकस नतर रही उर जाई छोड़ पसार इहां रो बपरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए जित कड़ नाम न उपजे हूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोह हरहाओ साध मिले सिद्ध पाईए के एहो जोग के भोग दो मिल कार्ज उपजे आराम नाम संजोग लोग जाने यो गीत है यो तो ब्रह्म विचार ज्यो कांसी उपदेश होए मानस मरती बार कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए गौड़ी जेते जतन करते डूबे भव सागर नहीं तारियो रे तर्म तर्म करते बो संजम अंग बुद्ध मन जा रे रे साध गराज को दा तो ठाकुर तो क्यों मनो बसारे रे हीरा लाल अमोर जन्म है कौडी बदले हारे रे हरहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नह बीचारे रे उन मतमान हिरे ओ मन मागी गुर का शब्द ना तारे रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरे हो मद्र लयत बकारे हो रे कर्म पाल संतन संगा ने काष्ट लो उधारे हो रे तापत जोन जन्म प्रमथा के आप दुख कर हम हारे हो रे कहे कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारे हो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलतर चो जगदीश काम सवाए गज पद परे मन बौरारे अंकस सहयो शीस बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पदे मन बौ

को सिरसा परिया मन बौरारे नाचो कर कर बार। जो नलनी छूटा गयो मन बौरारे माया यो व्यवहार। जैसा रंग सुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार। नावन को तीर्थ कने मन बौरारे पूजन को बो देव कहो कबीर। छूटन नहीं मन बौरारे टूटन घर की सेव। गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगने तस्कर नेर न आवे। राम नाम तन कर संचौनी सो तन कतही ना जावे। हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार। ए सार तन कही है जो सो प्रभु गोविंद की सेवा। सो सुख राज न लई है हरहाओ इस तन कारण से संकादक। खोज पै उदासी मन मुकंद जे बा नारायण। परे न जम की फासी निज तन ज्ञान पद गुरदीनी। तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम मन तावत। परम बंधन पो पग कहे कबीर मदन के माते। हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असभस्ती। हम कर एक मुरारी गौड़ी जो कब के कर मुष्ट चरण की। लुब्ध न त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच सियो। ते फिर गरे परे हो भगत बेन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बेन कही न सच रहो रखाओ। ज्यो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने न कराओ लयो। तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो। या तन जोबन आर सुधारा पेखन को जो दयो। तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औध अनल तन तिन को मंदर चौधरी ठाट ठयो। कहे कबीर ऐसा कर तरण को मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी

इस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करी जय।

आओ आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

तेरी हरो विपत जन करो सुपाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा, बेगमपुरा सहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तेठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता न तरस जवाल, आ मैं खूबतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ, कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेम एक सो आही, आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम मैल न को अटकावे, कह रविदास खरा चुमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो, काट आव काट डूगर कणा, एक निर्गुण पैल हमार, परमैये सो एक बेनती।

सो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, संका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसते, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, खड़ पीतर बेबद बेकार, सुध कमन पर होए बो, सुझ कुंचर बेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गात, जांत सब संसार, पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिये, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मान मन गी मिले, छुटकत बज्र कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख, निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह पंग, गुर प्रसाद, राग आस महला पहला, कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह, सो कर केह, जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख,

पे नजर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहा लिवलाए हरहाओ जी उपाए जुत खत कीनी काली नथ क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रहा नाल कुटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस शेद क्या वड्डा पाया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्तारी आराम ना फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजे शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्ब जोत रूप तेरा देखया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप निरालम बैठा नजर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो तो रता नानक कहे विचारा आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार गली गल्ला सिरजनहार खाना पीना हसना बाद जाव लग हृदय न आवे याद तो प्रवाह कही क्या कीजे जन्म जन्म किश लीजी लीजे हरहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मोल है कीते अरदास पाप पुंद साखी पास जैसा तू करे तैसा को होए कुछ बिन दूजा ना ही कोए जेही तू मत देहे तेही को पावे तुझे आपे पावे तिवे चिलावे राग रतन परियां परवार तेस विच उपजे अमृत सार नानक करते का यो तनमाल जे को बुझे यो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने कर आया तामिल सगियां काजर चाया खेल देख मन अंध पाया सहो भी आने आया गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे कर आया जग जीवन पतार रखाओ गुरु द्वारे हमरा वी आओ जे हुआ जा सो मिले आता जानिया त्यो लोका में शब्द रव्या गए आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारे होरन कार्य ना होई जित कार्य सर संतोख दया तर्म है गुरमुख बूझे कोई पंत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनु नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रो बन संसार सह सुपाए दुरमत गात पई कीर्त ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाओ सतगुर सेव पाए निजताओ
मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व जोत पूर्ण भगवान रखाव, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन परखरे, काम क्रोध अंतर तन हेरे, दुविधा छोड़ नाम निस्तर, सिफत सलाहन सहज आनंद।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंध खान जीवन की बहुती आस लेख तेरे साध गिरास एरस अंधले दीपक दे भौजल डूबत चिंत करे

आए, नदर कर इतना सदगुर मिले, परमत नानक पवजल तर आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे तरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पे चोखी सिंचित पाओ करेगी सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे है राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जिनेऊ ध्यान पुष्पाती हर नामा जा जा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचिर जोत है नार।

चित्त पंच गुप्त मन वस थिर न रहे जैसे पवे उदस। मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे हरहाओ। फूल माला गल पैरो गी गारो मिलेगा प्रीतम तब करो गीसी गारो। पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन गारो। पंच सखी मिल दुन करेगा सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख। एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर सेवा महला पहला। मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी। खिमा सीगार कामन तन पैर रावे लाल प्यारी लाल।

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। रहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल तिन नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे।

पाए भाग कोए गुण संग्रह विचों अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समाग हरहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम काने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समागे सेवड भागी जिन नाम ते आया सदा गुणदाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाय नानक कीमत कहन न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी विशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीव तरह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गल पाए आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर सेवत ही सुसा शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर रंग लाए तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए रहाओ सद चाखे साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर पर सदा रहा परपूर आपे नेड़े आपे दूर आखने आखे बके सब कोए आपे भविष मिलाए सोए कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारण हार आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया सदगुर सेवे सोजी होए दूजे पाए न लागे कोए मूल लागे से जन परवान अन दिन राम नाम जब हिरदे कुर शब्दी घर एको जान रहाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया दुरमत महल सब दुरत गवाया आसा महला तीजा मनमुख मरे मर मरन विगाड़े दूजे पाए आत्म संघार मेरा मेरा कर कर विगूता आत्मा ना चीने परमे विज सूता मर मोया सब दे मर जाए उस निंदा गुर समझान आई हे जोग में लहा हर जप ले जाए रहाओ ना विहून गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दूजे लोभाए ना विहूनी दुख जले सुबाई सौ गुर पूरे बूझ बुझाई मन चंचल वो चोटा खाए इथों छुटकिया ठौर न पाए गर्भ जोन रिश्ता का वास इत कर मनमु करे निवास अपने सदगुर कौ सदा बल जाई गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई निर्मल बाणी निज करवासा नानक होमे मारे सदा उदासा आसा महला तीजा लाले अपनी जात गुवाई तन मन अर्पे सदगुर शरणाई हिरदे नाम वड्डी वड्याई सदा प्रीतम प्रभ होए सुखाई थो लाला जीवत मरे सो हरख दो समकर जाने गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई बिन शब्दे को थाए न पाई करणी कीरत नाम साई आपे देवे टिल न पाई मनमुख परम फुले संसार बिन रासी कूड़ा करे वा पार बिन रासी वखर पल्ले न पाए मनमुख फुला जन्म गवाए सदगुर सेवे सो लाला होए ऊतम जाति ऊतम सोए
ਗੁੜ ਪੌੜੀ ਸਬਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਪਰਮ ਫੁਲਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਵੱਧ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਸੀਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤ ਤਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨ ਹਰਾਵੇ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਪਾਵੇ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਧਿਰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰ।

सुहाग हुमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निस बसर प्रे संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

हर अशोट होशे रसमाता कर्म वस्त बार उड़ जाता तूने न जाई सज अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

हुआ उन संकाम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा हरहाओ पवित्र भंडार गुरबाणी लाल गावत।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गुर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा मोहल्ला पंजवां, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

मन सदा आनंद आन सामे व्यापे चिंद हर्ष पीवे आल मस्त मतवारा आन सा सब होशे रे रहाओ हर्ष की कीमत कही।

मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रवे अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम स्यों मेरो।

आगे हीते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, ऊर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पहे सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निधान साहेब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरे ता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

आई जो प्रभ जी मन पानी। तू दाना तू सद मेहरवाना ना मिले रंग माणी, तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी। सा संग हर पाईए, खोल किवार दिखाले दर्शन। पुनरप जन्मन आईए, मिलो प्रीतम स्वामी अपने। सगले दुख हर ओरे, पार ब्रह्म जन दे आराध्या। ताके संग तरोरे, हरहाओ मां उद्यान पाव सागर पे। हरग सोग में बसना, सदगुर पेट पया मन निर्मल। जप अमृत हरसना, तान तन थाप कियो सब अपना। कोमल बंधन बंधया, गुर प्रसाद पय जन मुक्त।

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म तो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुरदाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, तो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अनंद रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो शरणाई, मुख देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जौ सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरे।

सदा प्रफुल्ल काड़ काड़ संपट हय रेजा का अपग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आच

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझ की तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार टोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तब तहरी पलो पयो प्रे कहे आ मानिया सूग सहज इस कर का जानिया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमतदार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु मां देव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर था के पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमे पचे मनमुख मुंह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब श्रे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कलमा दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ सब जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमाही, जाकी बख्श ना मेटे कोई, मन वासाई गे सच्चा सोई, सगल समग्री ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन।

वंजन वहंदे वो चढ़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिम

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनु तू अस्थिर कर मान है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र गृह सगल समगरी सामित्या असनाहा रे मन क्या करे है हा हा हिट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लय लाहा रहाओ जैसे वस्त्र दे ओढ़ाने दिन दो चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत कोर को आहा जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा रे मन लेखे चाले लेखे वैसे लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अबुट बाते पई सिदरी दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगासियो मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सदगुर मिलई हरहाओ मुए कृपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंढते मन सगल कृष्ण बुझ गई एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कम वखाने आगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेगताया सत

ओंकार सदगुर प्रसाद सदगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ते पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पावो सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाय ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हों में कौरा रहाओ यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेल यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस कीए होमे ग्रास एक दिथाय कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनग सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तन का को कहिए बिन गुर राम नाम कत लइए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रखाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सहे समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत सलागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪਵਨੇ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ

अंतरवस्त ना जाननी घट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन मैं तप करे नित तीर्थ वासा आप ना जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम ना विसर ऐसा ते मन माने आसा महला पहला मनसा मने समाये ले

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषता दोई बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया बाजी संसारा खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा होमे चौपड़ खेलना झूठे अंकारा सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा अंत सखा ई पाया जन्म मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे नानक नाम ना विसर पूरा गुर तारे आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

अस्तु मारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुकम ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

अंदर खोले देव दृष्ट देखे मुक्त पंडारा अंदर मैल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा पारखिया वस माल लई गुरसोजी होई ना पदार्थ अमुल सा गुरमुख पावे कोई बार पाले सो क्या लहे वध करे अंदर पाई परमे पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई तार दर छोड़े अपना पार कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़िए बिन नावे चोटा खाई जिन्नी खर जाता अपना से सुगिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई आपे दान करे किसे आखिए आपे दे बुझाई नानक नाम त्याए तू दर सच्चे सोभा पाई आसा महला तीजा आपे आप छाणिया साध मीठा पाई हर चाखे मुक्त पे जिन्ना सचो पाई हर जो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा गुरमती साल आईये दिखिया मैं उदासा हरहाओ बिन सबदे आपन जापई सब अंधी पाई गुरमती कट चानना नाम अंत सखाई नामे ही नाम वरत दे नामे वरतारा अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई नामे ही कड़ चानना नामे सोभा पाई नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई बिन नावे कोई ना मनिए मनमुख पद गवाई जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम ही नाम मनिए नामे वड्याई जिसनू देवे तिस मिले गुरमती नाम बुझाई नानक सब किश नावे के वस है पूरे पा को पाई आसा मगला तीजा दुहागनी महल ना पाए नी ना जानन फिर का सवाओ हिक्का बोले नानवे दूजा पाओ सवाओ क्यों मनुआ क्यों करवा से आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती कर आवे रहाओ सुहागनी आप सवारी ओन लाए प्रेम प्यार तगुर के पाने चल दिया नामे सह सीगार सदा रावे फिर अपना सच्ची सेज सुखाए फिर के प्रेम हुईया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सीगार है

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कह पाए प्यार से सुखाली पिर रवे। हम मैं तिसना मार कर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुणे बगसाए लए ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

दांत सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चलावो लैलाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर घर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेकी है नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंध पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पय लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु

पाणे कारज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद। कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद। आसा मोहल्ला पंजवा बिरघड़े तर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार बिखिया के भी।

आवे सो करी प्यारे, आवर केश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ साई कार कमावनी प्यारे, पुर मस्तक लेख लिखाए, एक को आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूबते उधर ले प्यारे, नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिट जिन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, नंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़या।

पाए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बंधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्भ पया, ताड़ पांडे जन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेप जे काले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, एन बद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाइए ने आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाच, लग चौरासी तीह पवया, एको लेवे एको देवे, अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहया, दे दे वेखे हुकम चलाए, ज्यों जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रब रहया सब थाई, एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी, तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव, सर्ब निरंतर रब रहे या, टड्डे टाए उसारे आपे, यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए, तिस निस्तारे

पुनरप जन्म न होई, तत्ते तारू पवजल होआ, ताका अंत न पाया, ना तरना तुलगा हम बूढ़

दिया सब नी लिया, तरमी करमी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहागन पैने, तंतन कब हूं मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखन को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर सरणागत

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल सच सब मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नस तुझ बाज एक तिल रह न सक कह सुन न तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मूल अमूलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर्दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोकां।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया की वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन परतापे ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवे चमके हर बाज राखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया सद कहे नानक चेत रे मन, मरे हरना कालिया पावरा फूल पवंतिया, दुख अत पारी राम, मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम, बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो, जाऊ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया इत पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मस की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बदक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया, परत कार चित लाए हरस्यों छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन, जीड़िया परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे ओ जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया, हर ना भगत ना हृदय साचा से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी मछुन्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर शब्द सी।

भगत भाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सोहर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन ससदा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किसे जाने। जल थल मैयल एको सोई गुरमुख हुकम पछाण। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले। साह तेरे सो सो सदा है एक खिन।

पूर्ण चोर न कत हो जाए। प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे न दाते। जल संग राती माशली नान कर माते चातक जाचे भूत ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे। मार्ख जाना सु प्रात मीत सब हूं ते प्यारा राम राजे। सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानिए। हर सास ग्रास न बिसरे कब हूं गुर शब्दी रंग माणिए। प्रापुरख जग जीवनो संतरस पीवनो जब परम भो दुख।

दर्शन कौ बलेगारी, गुरसो प्रसन्न मिलना विछुन्न, तन देंदी साच स्नेहा, कौ नानक संत अनंत ठाकुर के, हरसों की जे नेहा, मन ऐसा नेहो करेहो, चकवी सूर स्नेहो, चित्र

रचायो नंगे आमन जामने आ, फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो किती है। को नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डेवे मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे हाव खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया। अत मिलो मित्र चिराने गुरथिया साखी ता डिठम आखी फिर जे अवर ना दिसे। को नानक शांत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे ऐसी मन प्रीत कीजे। आसा महला पंजवा श्लोक बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक शोधन बंदना कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा तार क्या है तुझे दयार मन त रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुणपणी कोड इंदर अनेक देवा जप्त स्वामी जय जयकार। अराथ नाथ दयाल नानक साल संगत मिल उधार कोड देवी जा को सेवे लक्ष्मी अंक पात गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिन सरात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतर बेत हर शास्त्र जा को जपात पद पावन भगत वचल नानक मिली गए संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी अन जानत जो सेवे तेती न जाए गनी अवगत अगंत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा। सर्व जाज एक दाता न दूर संगी जारा बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवा श्लोक उदम करो वडपागी हो सिमरो हर हर राए नानक जे सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द प्रम जाए। शंत नाम जपत गोविंद न अलसाइए पेड़ साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द न पौ व्यापे नाम सिमरत ससुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्राव मान मुखी।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

इस ठाकुर सरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया। साध संगत आप होआ आप जगत तराया। राख लीगे रखन हारे सदा निर्मल करनी। नानक नरक ना जाए कबहू हर संत हर की सरणी।

आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साते पासा संगत सदा नानक मिटे दोह कमाते वल वंच कर उधर पर

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे कान बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिनसत ताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कहना सुंदर चतर सुजान स्वामी।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्द गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिन सुभागे, मेरे नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

संग्राम रण में छुट्टे प्राण, ला सुरती ला ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान, पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू देत मिले सच ता तिनी सच कमाया, सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख, महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

आपे होवे कट न कोई आखे पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

रसवा हो, कलयुग रस अगन का, कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला, साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे, सब को सच समावे, रेग कहे रहया परपूर, राम नाम देवा मैं सूर, नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोखंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन मैं रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वडे आईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी,

करना कियो कर आपे ही तै तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडी है।

गोर चरण लाघम बिनवत पूछत कहे जियो पाया, कामन काज जग उपजे बिनस कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभो,

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाष चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ, चूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे, ताबरे तर्म की आस करे,

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का फल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

की आस करे जम निहारे सत्सा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

छोड़ परम निधान बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्ज पसना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग, कर विचार विकार परहर

गुप्ता हीरा प्रगट पयो, जब गुर गमदिया दिखाई, आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी, सौरे पेये बुरी, आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी, पली सरी मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी, रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई, बड़ी का सुहाग टरेओ, लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ, आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ, इन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा, बिटवे राम रमो।

देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई, आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद संग।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कंडे कचया।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुरप्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो हरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़।

कर गर्दव पवे गर्भ जोनी दईये मारे महा त्यारे दीन दयाल हो जानी ऊपर कर कृपा लियो उबारे नानक जन हर की सरनाई हर पावे हर निस्तारे गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लाभो और अनदिन राम नाम नित त्याई सब सुख सब गुण सब निदान हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दरगे ले छाई रहाओ तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी कर कृपा लोच मेरे मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रलोच पूरी सदगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई ना बिना रस कर दुख पावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर घर सरना तिन दरगे हर घर दे वडे आई तन तन सावास कहे।

आपन हाथ मतात सियानप काहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमामन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवा सब त्यागे जंपर ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़े

सगल सिट को तनी कहीजै, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभ की आगम

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

नीचे जोत तरी त्याइए अपनो सदा हरी। सोच अंदेसा तां का कहां करिए, जा मैं एक करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सदगुर, मन शरण तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक,

मेरे साध बचन गोविंद ते आए, महा निर्मल रीत रहाओ, जाप ताप अनेक करनी, सबल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे, पय पूर्ण काम, सास सासना बिसर कब हूँ।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच दे मनहार। अये जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है,

करे पिखिया कहो केते उधर भरण कहताई बिन घर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ ना जाई ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठंड जन्म जन्म वैराई साचे शब्द रते से बाचे सदगुर बूझ बुझाई गुर शरणाई जोए न सके दूत न सके संताई अवगत नाथ निरंजन रते निरपोस्यों लिवलाई ऐ जी ओ नाम दिड़ो नाम।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझगी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किछ रहे न दिसै

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राग परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

जगदीश जापमान तारद प्रतीत जी दया मया सर्वतरमण परमहंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन।

पौड़ी ए मना अत लोभिया नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

बलाए मिटे अंदेसिया, जिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल धोए, अमृत साचा नाव उथे जापिए, मन को होए संतोख भुखा त्रापिए, जिस कटवस्या नाव जिस बंधन काटिए, गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए। श्लोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी, उदम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आरो।

छोड़ सियानप सगल मंतन अर्पतार पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साध जना के संग भवजल बिखम तर सेवो सदगुर देव अगे ना मरो डर खिनमय करे निहाल ऊने सुबर पर मन को होए संतोख तिहाइये सदा हर तो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तोर श्लोक महला पंजवा लगड़ी सो थान जोड़ नहारे जोड़िया नानक लहरी लख सयान डुबन दे ना मा पिरी महला पंजवा बान पी हावले एक साथी लदम दुख हरता हरनामा बल बर जाई संत प्यारे नानक पूर्ण कामा पौड़ी पाईन सब निधान तेरे रंग रतिया ना होवी पछोताओ तुद नो जपतिया पहुंच न सके कोय तेरी टेक जान गुरपूरे वाहो वाहो सुखला चितार मन गुर पे सिवत भंडार करमी पाईए सदगुर नदर निहाल बौड़ना ताईए रखे आप दया।

गोविंदेत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सप्तं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी।

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चरा हर जस,

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भय किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल एक रव्या न दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपावन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बंत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

तू मन लह सो जन सा बास तब तेरा चोज वर्तदा दुख सुख तुझ पास। सलोक महला तीजा गुरमुख सच्चे पाम दे दर सच्चे सत्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया

से आपे सुगड़ स्वरूप से आनी अपना चोज कर वेखे आपे आपे सबना जिया काहे जानी। श्लोक महला तीजा। एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रम मेरा चित आवे हरसो प्रीत उपजे माया मोह जलावे। गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जम्मे हुए खुवार। महला तीजा। प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास न जाए नानक सब गुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बगसे करे दया आपे फुल न फुले कभी सब सच तपापस सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरे साध संग तैतन उड़े खेहे जिन कीती तिसे ना जानई नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा। खड़ बसते चरणार बिंद रसना जपे गोपाल नानक सुप्रभ।

जग मोह मर के ना जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। महल्ला तीजा, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहेब मनोना विसरे ता सैला मरना होए, मरने ते जगत डरे जीव्या लोड़े सब कोए। गुर प्रसादी जीवित मरे हुक्मे बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सा जीवन होए। पौड़ी जा आप किरपाल होवे हर स्वामी, ता अपना नाओ हर आप जपावे। आपे सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप घर पावे। अपने सेवकां की आप पैज रखे, अपने भगतां की पैरी पावे। तर मराए हाय हर का किया, हर जन सेवक नेड़ न आवे।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

एमान योतन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद है खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई फाणत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आ डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए योगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

पिरो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल परे यार ओए आए न सक्का तुझ कन प्यारे तेज न सक्का कोए आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए तय साहब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे शीश वड्डे कर बैसण दीजे विण सिर सेव करीजे।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़हंस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़ांस महला पंजवां।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

पंजवां साध संघर अमृत पीजे ना जी उमर न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाई है गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़हांस महला पंजवां।

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका।

हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम पय हर की सरनाई पाथर डुबदा काट लिया साची वड़ियाई बिग से अमृत पय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पय अंतरवासना वसाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए मनमुख पूले दिख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखु हर हर सबको करे विरले हिरदे वसाया नानक जिनके हिरदे वसया मोख मुक्त तिन पाया वढ़ांस महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है जब साज अंदर होए सच ताम साचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बही है भला कही है

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नहीं पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे, सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे, वढ़ान

अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी फेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सतगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला

जय हरा बीज अन दिन नाम खाने गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस पीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वस होए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाने।

करो सुख दाते दियो सतगुर चरण गम तूरा, कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा, गुर जेवड दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम, हर घर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुर चरणी मन लागा, कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई, वढ़हंस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता गुरमेल सुमाणी राम, सदगुर मेल घर नाम सुमाणी जप हर घर नाम त्याया, जिस कारण हों ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी, हों गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया,

मन इच्छे अड़ा फल पाई गए राम, मन इच्छ पाई गए प्रवते आई है, मिटे जम के त्रस गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण अस तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याई है, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा गुण बेअंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुचा, आप उपाय आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनखद वाजे, राग बढ़हंस महला पहला, कार पंजवा अरहानिया, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तन दे लाया, मोलत पुन्नी पाई परी, जानी एड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया, लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए, काया हस्ती आवे छोड़ा, जादर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया, जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह हो, जिन जग तंडे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना, ज्यो मेहमाना, काहे गर्व की जय, जित सेवे दरगे सुख पाई है, नाम से काली जय, आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, जोत पावे समृत सोथिये, हिलड़ा यो संसारो, जल थल महिल रब रहया, साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो, अलख अपारो, ताका अंत न पाया, आया तिनका सबल पया है, एक मन जिनी ते आया, ताहे टाए उसारे आपे, हुक्म सवार नहारो, जोत पावे समृत सोथिये।

निवास मानमुख मुए मैले शब्द ना जाननी काम क्रोध विनाश सतगुर का पौ छोड़िया मन हड़ कामन आवे रास जंपुर बदे मारिए को न सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे ओ साध जान जिन हर घर नाम दृढ़ाया सो सतगुर पूजो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया तो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया तेस सतगुर की सा पगी पाओ जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब तन तन जिन घर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई भेखी भुख न जाए दुख लगे कर कर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहजन आयो सहजे ही लै खाए मन हर जिस ते मंगना लैना दुख मनाए।

से उबरे सटे सिउं लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बलोइए है जे ही हर नाम लेहो हर तत् न खोइए नित जपेओ हर हर दिन सुरात हर दरगह टोइए सो पाए पूरा सदगुरु।

पौड़ी तिस गुर को हो मारिया जिन हर की हर कथा सुनाई तिस गुर को सद बलिहारणे जिन हर सेवा बणत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू लै छड़ाई।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुरु हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओस नू सुख न उबजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए सह संजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए जिसकी मुठ्ठी विच जगत सवे आया तिसको तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तो ऐसा हर दीवान मसिया भगतां कै हिरदय तेन रहंदे खोंदे आन सा भगतां अगे खलवाया हर नावे की वड्याई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख विरलै कने त्याया श्लोक महला तीजा।

गुर प्रसाद सोरठ महला पहला कर पहला चौप दे सबना मरना आया विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया आगे मिल के नाहा जिन मेरा साहिब विसर वड्डी वेदन तनाह ई सहायो साचा सोए जा की नदर सदा सुखोए रहाओ वड्डा कर सालाना है की होसी सोए सबना दाता एक तू मानस दात न होए जुत पावे सोचिए रन के रुन होए तत्ती उपर कोड़ गढ़ केती गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औ गुण चेतड़े।

खर्च बन चंगियाईया मत मन जाने कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदिया कर तावनी ताको आखे धन नानक वेखे नदर कर चढ़े चवगण वन।

खबर न पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से न पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पाग सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ तरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज विड़ाना जलथा।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण।

होचे तू गौरा हम हौरे तुझ की मन राते आयनस प्रभाते हर सना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द पेद फुन साचे आयनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस साला ही किसे शरीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना त्रिकाल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो ना त्रिपाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान ना त्रिरूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ ना त्रिमात पिता सुध बंधव ना त्रिकाम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे चूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचाचारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए हर सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

दुट चौकड़ी सदा कूड़ कमाव है, ना बूझे विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया, हर नाक्ष नखे बेदारे। प्रहलाद जान सद हर गुण गावे, हर जीव लय उबारे। आस को बो भला कर जान है, मन मुख मत न काई। साधु जन की निंदा व्यापे, जसन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही, अंत गए पछताई। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। सब दे राते सह दे माते, अन दिन हर गुण गाए। नानक दास कहे बेनंती, हौ लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा, तो सिख सका बंद पहै भाई, जे गुर के

तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुरसरणाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जगम शलीख हरे आपे, आप फुल न फुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप गए चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाइंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस तापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निदान है।

आपे शब्द समाहा, आपे लिखण आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

बाद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया।

भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण मूर्ख जाता रे।

तीराग ठाकुर ते, हम तेरी शरणया, जय भंडार गोविंद का खुलिया, जे प्राप्त ते लया, एक रतन मोको गुर दीना, मेरा मन तन शीतल थेया, एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर नाम हुआ, भगत भंडार

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या तीन त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही इस लाख बेदन जने आई रघाव जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुगे प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर में परया जित को लाया तित घी लागा तय सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ए सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल से अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार खैलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरत्या नयन जय सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दिशा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणिया रे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बिधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम

उपदेश तुम्हें संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाईए। होरेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाईए। काल न पाने अंतर विध जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेव। गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा। ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा। विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई। हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा। मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने। निरपो पै हृदय नाम सिया अपने सदगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे।

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कड़ा सोहेली, आद अंत मद नानक हो तो प्रभु वा बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संत या बतावो कारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोर

ए पीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलावो, अपनी बेद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ, विसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुर पूरा फेट्यो वड पागी, जन नान कते ना ताव, सोरठ महल्ला पंजवा, जाके सिमरन सब कछ पाइये, विरती काल ना जाई, ते प्रत्याग अवर कतराच्यो, जो समय रहया सुमाई, हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ, सार संभाले नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे। तोरठ महल्ला पंजवा, अविनाशी जीयन को दाता, सिमर सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई, मेरे मान जाप गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड पागी सासंग परापद, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछे, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महल्ला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन पेड़ होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ, समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर